महक दियां यादां दे नाल रात दा काफला, खूबसूरत आवाज दा सफर। रोजाना राती 11 बजे सुनना ना भुल्यो महक दियां यादां, सिर्फ हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: सब एक ना कोई दूसरा। फिर किस नाल दौड़ा लौड़िया इना जिंदा दा जीवन जिवे पानी ते लीकां वोड़िया। कठिया ने कदम मिलावने कठिया ने सफर मुकावना। रंग रूप अकारा तो परे एक ऊर्जा एक भावना। होमे दा चढ़िया सागर ए आओ रल मिलके इंज तरते हाँ। दिल मिलने हाथ जुड़ने सिर झुकन की सेवा करते हाँ। दिल मिलने हाथ जुड़ने सिर झुकन की सिमरन करते हाँ। ते सांझ दिलां दी कह रही चौकूट मेरा परिवार है। कण कण नू मेरा नमन है। कण कण नू नमस्कार है। नमस्कार है। नमस्कार है।
1: हर प्रोग्राम दी जानकारी रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लिए विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा साउथ गीत।

0: हर एक चाहत मुका दिती, हर एक हरकत मुका दिती, तू मछली नू जुदा करके मोहब्बत दी सजा दिती। मैं चाहां भी जंजीरां छड़ के किधरे जा नहीं सकदा, मैं सर्दी दे दिना अंदर हर एक बेड़ी जला दिती, कि अजे तीकर भी खुशियां दा कोई नुस्खा ना लभ सकिया। मैं सारी उम्र ही प्रयोगशाला विच लंगा दिती, मैं परले पार जाना सी तू उरले पार आना सी, मलाहां दी लड़ाई ने तां बेड़ी ही डुबा दिती। मोहब्बत दी कहानी तां उदासी तीक पहुंची है, मोहब्बत दी कहानी तां उदासी तीक पहुंची है, मैं जिसनू हार पाना सी उन्हें गर्दन कटा दिती, मैं जिसनू हार पाना सी उन्हें गर्दन कटा दिती।
1: तुहाडे मन दी रीज पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो।

0: हरमन रेडियो नो तुसी कई तरीके दे नाल सुन सकदे हो। एप्पल ऐप स्टोर तो तुसी आईफोन आईपैड अते आईपॉड टच ले हरमन रेडियो सर्च करो। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ते तुसी गूगल प्ले स्टोर तो फ्री डाउनलोड करो। ब्लैकबेरी नोकिया अते विंडो मोबाइल ले तुसी ट्यूनिंग ऐप डाउनलोड करके हरमन रेडियो सर्च करो। harmanradio.com ते भी तुसी सुन सकदे हो। कोई भी वाईफाई रेडियो सेट ते भी साडे चैनल उपलब्ध हन।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप दी
2: छुरी पाई पैर ना पूरी आई सजना तू बेकदरा है मेरी क्यों कदर न पाई
1: आवी
2: ओ सिकंदर।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लाई तुसी भी हरमन रेडियो दिया सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो।

इस मन को कोई खोजो पाई गुरबाणी की आत्मक खोज अते आत्मक लाहे की प्राप्ति लई गुरबाणी दियां गुझियां कुंडियां नूं खोलदा प्रोग्राम गुरबाणी विचार सुनदे रहो सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अपने हरमन रेडियो ते जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

साहिब जी का विचार है कि दावे करने विच सिर्फ साड़ा ते ईरखा ही पल्ले पैंदे हन। जिहड़ा बंदा दावे तो बिना निरदावे रहिंदा है ओ निसंग भाव लोक लाज तो परां ओ मुक्त पुरश हुंदा है। ऐसा बंदा तां इंदर वर्गे दावेदारां नूं भी कंगाल ही समझदा है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

जी रोजाना सरवण करदे हो प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी। इस प्रोग्राम विच नितनेम शब्द कीर्तन गुरबाणी विचारां अते सिख इतिहास पेश कीता।

रब रमजान रब ही जाने जिस त्योहार बस एक पैमाने चारे पासे केदा पसारा आखी दुनिया सिरजनहारा जोगियां नूए राज बखा दे राजियां तोए भीख मंगा दे युगा युगा ए अटल देवता बर्फा विच भी निग सेकता पेड़ देखदा पौना नहीं सौखा कंडियां तुरना पैना चोखा सीस चुकावां मन सदके जावे जे कोई इसदा रूप दिखावे हो सकदा कोई मस्त कलंदर रूप बन बैठा सब दे अंदर ऐसा कोई योग दवा दियो अंदर बैठा वेखन ला दियो हर कोई मन्ने जिस दे पानी रब दिया रमजां रब ही जाने रब दिया रमजां।

साल की उम्र विच भाई बूड़े ने गुरु नानक देव दे चरण परस के प्रश्न किया सी ते पुछया सी के बाबा जी मौत दा भय किवें मुके। सतगुरां इस दा नाम बाबा बुड्ढा ही रख दिता क्योंकि ए प्रश्न बच्चियां दा नहीं सी बुजुर्गां दा सी ते जिस हिरदे विचों ए प्रश्न निकलिया है उत्ते जरूर बुजुर्गी छुपी है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो।

शुरुआत होवे सुहावनी। रोजाना प्रोग्राम दलजीत सिंह होना दे नाल हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे संग।

एक बार जो तुझ पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सोए कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, एक राह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईया, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रकी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा

नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरां सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोत महामलसूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामा ताके रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंका कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे।

अस्थिर करमानी ते पाहुन दोदाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथिया असनाहा। राग आसा विचों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बोल कि हे मनुख, हे जीव, जिन्हां पदार्थां नूं पदार्थां विच साडा घर भी है, कार भी है, कारोबार भी है, नौकरी चाकरी भी है, साडे आल दुआले जुड़े जिया जंत भी हैं, रिश्तेदार भैन भाई, पर यह सब कुछ कुछ पलां दे ने, कुछ पलां दा साथ है। सतगुरु कहिंदे सब मिथिया असनाहा, ये जिन्नी भी समगरी है सब मिथिया होया, साडा इन्हां नाल प्यार है, समा पाके हर एक चीज साडे तो विछड़ जाएगी, खोई जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो नाल निभण वाली केड़ी चीज है, वह है अकाल पुरख का नाम। जिन्होंने अकाल पुरख के नाम नाल जुड़ना किया, उन्हां दा ही ए मनुखा जन्म सफला होया। ता आओ अपने इस मनुखा जन्म नूं सफला करिए, ते उस अकाल पुरख के नाम विच जुड़न लई एक शब्द नूं सरवण करिए।

सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इन्हां बोलां दे नाल आओ सरवण करदे हां गुरबाणी दा एक शब्द।

त्यो से काहे जग आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। रागासा विचो धन गुरु रामदास पातशाह दे पवित्र बोल जिन्ना ने उस अकाल पुरख का नाम सिमरिया नहीं उसनु चेता नहीं किया उन्हां दा इस जगत विच मनुखा जन्म लेना असफल है। सतगुरु सानू रोज समझाउंदे ने भई प्राप्त मानक देहुरिया गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया वारी मिली है इस करके चेता तो रखना पैना है क्योंकि ए मानस जन्म दुर्लभ है ये दोबारा नहीं मिलना दुर्लभ बड़े जुद्धा दे नाल मिलिया बड़ा जोर लगा 84 लख दा गेड़ कटिया फिर ए मनुखा जन्म बनिया ते जे ए असीं व्यर्थ गवा लिया नाम बिना बिरथा सब जाए नाम जपन तो बगैर ए मनुखा जन्म व्यर्थ जा रहा है। आओ सतगुरां दे इन्हां बचनां नूं मानदे होए इस मनुखा जन्म दा लाहा खटिए व्यर्थ ना गवाईए तां आओ गुरबाणी दे लड़ लग के सरवण करिए गुरबाणी दा इह पवित्र

सरगर्श की करते हुए सवेर दी ताज के संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालवन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: 24/7.
1: यात्रा बारे श्रीलंका की कहावत है कि यात्रा नाल सियाणप लब्भी जा सकती है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा हर हर गंगा तंगा ने लिया पंगा।
1: जदों अपनी गलती नाल मुसीबत गल पै जावे उदों इंज आखदे हन।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

दोस्तों, मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो। हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां। मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझा देण लई यूट्यूब पर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यिक मंच देख सकते हो।

एक जर्मन दी कहावत अनुसार रब अखरोट ता दिंदा है पर तोड़ने थोनू आप ही पैंदे हन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: आओ सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा कर लड़ाकी बाहर संगणी मेलो मेरा ना।
1: कर वालियां नाल ता अजोड़ रखना पर बाहर मिठी बन के रहना।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: ओ आखे कमजोर कहानी दिल वाले, मैं आखा मुंह जोर कहानी दिल वाले। ओ आखे की सुपने अंदर रखे आए, मैं आखा चल टोर कहानी दिल वाली। पावे प्रीत पुरानी भी हो जावे, पावे प्रीत पुरानी भी हो जावे, पर रेंदी नवी नकोर कहानी दिल वाली। करांगे चिंतन,
3: कढांगे मसलियां दे हल।
2: प्रोग्राम दिल वाली गल,
3: दिल वाली गल।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही ता जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप दी।
2: आओ लक्कड़ दे तख्त या तंबे दी सपोर्ट ना, ना मेन गेट छेती बिलो खुलने रिमोट ना।
1: आवी